आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अभी लेकर आता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

0: वेरी गुड अप्रैल फूल बनाया तो उनको।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 p.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 5 PM.

हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार मूवी चॉइस। कल सोमवार में सुनिए स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल और कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार मूवीज चॉइस। तो संडे स्पेशल में आज मूवीज के जो नाम है वो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं और उस मूवी में जो लिस्ट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले है नसीब 1981 वाली, ओम शांति ओम 2007 वाली जिसका अभी मैंने गाना प्ले किया था, उसमें भी बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। और प्रेम रोग जो 1982 में आई थी, और उसके बाद है पति पत्नी और तवायफ, उसके बाद फूल और कांटे हैं, और इन पत्थर के फूल जो 1991 में आई थी, और इन प्यार दीवाना होता है 2002 में आई थी ये फिल्म, और पहचान 1993 में, और प्रेम 1995 में, और प्रेम ग्रंथ 1996 में, और प्यार किया तो डरना क्या 1998 में, और क्यामत से क्यामत तक 1988 में, राम लखन 1989 में, और रंग 1993 में, राजा बाबू 1994 में, और राजा 1995 में, राज 2002 में, और रक्त 2004 में, और रक्षक 2006 में, और रब ने बना दी जोड़ी 2008 में। तो नसीब, ओम शांति ओम, और प्रेम रोग, उसके बाद यह है इन पति पत्नी और तवायफ, और फूल और कांटे, और पत्थर के फूल, और प्यार दीवाना होता है, पहचान, और प्रेम ग्रंथ, और प्यार किया तो डरना क्या, और क्यामत से क्यामत तक, राम लखन, रंग, राजा बाबू, राजा, राज, रक्त, रक्षक, और रब ने बना दी जोड़ी। इन सबसे आप गाने की डिमांड अभी कर सकते हैं लाइव शो की ड्यूरी। तो तब तक मेरी पसंद गाने इंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

वेलकम बैक रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत से दोस्त से जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफ भाई सरफराज पटेल जी जुड़ चुके हैं साउथ अफ्रीका से, वेलकम करते हैं। बीरबल बघेल जी जुड़े हैं, उनके बाद वेलकम करते हैं उनका भी, और आरिफ सिंधी जी आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ अशोक देशमुख जी वेलकम करते हैं आपका भी, और सर्वेश भगत जी आपका भी वेलकम है, और रणवीर सिंह जेठालाल जी मुरादाबाद यूपी से जुड़े हैं वेलकम करते हैं आपका भी, मिसाल अंगद जी वेलकम करते हैं आपका भी, और संदीप सुतार जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, संदीप सुतार जी आपका भी, और यहाँ पे नेटवर्क स्लो हो गया है, मैसेज नहीं खुल रहा है। हाँ, और हमारे ये सर्वजीत शेट्टी जी हैं, और यहाँ पे सुंदर पाल जी हैं, ये भी नेपाल, ये हैं हमारे ये भोला जी, ये पंजाब से हैं, और शिल्पा बहन जी जुड़ चुकी हैं आपका भी वेलकम करते हैं।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार मूवी चॉइस। कल सोमवार में सुनिए स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल और कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: बिल्कुल, तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ के इन जो पसंद है उनसे। मैं हूँ हीरो लेकिन मैं तो जीरो हूँ भाई फिलहाल। ये गाना
2: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो ऑटो चार्ज जो आपको दीवाना बना दे जी से पास बहुत सारे आ चुके हैं तो शामिल करते हैं सबसे पहले ये
1: याद सताई तेरी नींद चुराई अब दिल न लगे दिल भर आग ले लगा ले मैं तड़पू अकेले अब रात रात भर याद सताई तेरी नींद चुराई अब दिल न लगे दिल भर।
2: बहुत बढ़िया सॉन्ग चल रहा था आरजे अमन सर जी और मैं भी जुड़ चुका हूँ रेडियो हॉट स्टार से। मैं सही दिन सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर
0: जी। वेलकम जी आपका भी और यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: आरजे अमन सर जी सुसंध्या नमस्कार नमस्ते जी। दीपक कुमार गायकवाड जी अपने गाने में शामिल थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी और माई नेम इज अमन और यहाँ पे सुरेंद्र या नेपाल जी लिखेंगे अमन जी आप तो जी बिल्कुल मैं जीरो ही हूँ और यहाँ पे दीपक कुमार जी गाय कहते हैं
4: अमन जी मुझे 99.9 श्योर था कि आप मेरा गाना बजाओगे क्योंकि मैंने ये गाना आपके लिए बजाया है और आप जीरो नहीं हीरो हो हमारे स्टार आरजे अमन जी। धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा।

थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि राम लखन का सॉन्ग बहुत बढ़िया लगा है। और जी थैंक यू सो मच आपका भी। और यहाँ पे आत्माराम पाटिल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। लिखते हैं कि सभी को दीवाना बना दे। रणवीर सिंह जेठला लिखते हैं कि मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आरिफ सिंह जी लिखते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी आपकी डिमांड सच में बहुत ही प्यारा था, सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अम्बेश कुमार इन सोनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अम्बेश कुमार सोनी जी। और ओके फिलहाल यहाँ पे संदीप सुतार जी लिखते हैं कि मैं हीरो हूँ, ये गाना सच में बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ महेश जी का, महेश जी सुनना चाहते हैं जिसे देख मेरा दिल धड़का। इंजॉय कीजिए सभी।

0: बिल्कुल एक लड़की है और यहाँ पे राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं राहुल पासी जी। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि महेश जी की पसंद मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं। और एम ताहिर साहब जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लिखते हैं कि सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार जी, वेलकम है एम ताहिर साहब। और अगला जो डिमांड है इसी फिल्म से मैं लेना चाहूँगा और वो गाना है आशिक प्रेमी आवारा। ये आरिफ सिंधी जी सुनाना चाहते हैं, तो पहले इनका ऑडियो प्ले करता हूँ मैं।
1: अस्सलामु

0: अलैकुम। आरजे अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से। आज की मूवी चॉइस में मेरे गाने के बोल रहेंगे, प्रेमी आसी का आवारा, तुम्हें जो पसंद है अजी फरमाना। फिल्म का नाम है फूल और कांटे, आवाज़ें दी है कुमार सानू जी ने। डेडिकेट रहेगा आरजे अमन सर जी आपको, आपकी सुंदरता की मूरत जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे आकंसा जी को, आरजे वंशिका जी को, आरजे रत्ना जी को, आरजे सोनी जी को, आरजे आदित्य जी को, और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से, शुक्रिया।
1: ओके जी, तो सुनवा रहा हूँ प्रेमी आशिक आवारा, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे काफी अच्छा लगा है। और यहाँ पे महेश जी लिखते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, हम आज पहली बार गाना भेजे हैं और गाना आपने प्ले कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी आप वेलकम है आपका भी। और सर्वेश भागा जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमनसा जी, आरिफ सिंधे जी अपने गाने में शामिल किए हैं, इसका पहले महेश जी अपने गाने समय में शामिल किए हैं, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं?
2: धन्यवाद आरिफ सिंधे जी, बहुत ही बेहतरीन गीत सुनवाया और गीत में शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। निमोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी आपका अशोक देशमुख जी। और आत्माराम जी लिखते हैं भाई जान, आरिफ सिंधे जी आपने मुझे गाने में डेडिकेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ जी क्या कहते हैं?
3: शुक्रिया आरजे अमन सर जी, मेरी पसंद का गाना प्ले करके मुझे सुनवाया और जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि फूल और कांटे का एक गाना मुझे बहुत ही शानदार लगा है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि फूल और कांटे की का जो डिमांड है बहुत ही प्यारा है। जी बिल्कुल। एम ताहिर जी लिखते हैं कि आरिफ सिंधी जी की पसंद मुझे मस्त लगी है। और निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड है वो हमारे सोनू गौतम जी का है, सुनना चाहते हैं ये प्रेम रोग का बहुत ही प्यारा गाना, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दावा तो कराओ। बिल्कुल करा दीजिए भाई।

और गाने में उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है आरजे अमन जी, आरजे वंशिका जी, आरजे सोनी जी, एम ताहिर जी और सुनील कुमार जी जो ये निपांगा बिहार वाले हैं, और सतीश शर्मा जी और प्रिंस पासवान जी और प्रीति रायदास जी और यानी कि कायनात जी हैं और प्रियंका जी हैं, बबीता जी हैं, राजेश कुमार जी हैं जो ग्रेटर नोएडा वाले हैं हबीबपुर से, और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी के लिए गाना डेडिकेटेड है।

और एक बार मैं फिर से फिल्मों के नाम में बता रहा हूँ, इस फिल्मों के गाने जरूर भेजे। फिल्म का नाम है नसीब 1981 वाली, अमिताभ बच्चन वाली, ओम शांति ओम 2007, और प्रेम रोग 1982, और पति पत्नी और त्वाइफ 1990, फूल और कांटे 1991, और उसके बाद इन पत्थर के फूल है 1991, और उसके बाद है इन प्यार दीवाना होता है 2002, और पहचान 1993, और प्रेम 1995, और प्रेम ग्रंथ 1996, और प्यार किया तो डाना क्या 1998, और ये क्यामत से क्यामत तक 1988, राम लखन 1989, रंग 1993, राजा बाबू 1994, और राजा 1995, राज 2002, और रक्त 2004, और रक्षक 2006, रब ने बना दी जोड़ी 2008।

0: बिल्कुल, मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी यार, और मुझे भी मोहब्बत हो गई है ना मेरी सुंदरता की मूरत जी से, लेकिन क्या करें।
1: जय अमन सर जी, सोनू गौतम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मीना कुमारी जी, नमस्ते करें सभी दोस्तों को। आर्य सिंधे जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं मैं हूँ प्रेम रोगी, ये सोनू गौतम जी की पसंद मुझे बहुत ही झक्कास लगा, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और ये लाइन थोड़ा सा सुनते हैं,

0: बिल्कुल। और यहाँ पे यानी किसी पर बेंजिल की ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है, लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और यानी कि वर्जू जी लिखते हैं कि अमन जी मैं भी सुन रहा हूँ और जुड़ चुका हूँ, वेलकम करते हैं आपका भी, ओके जी। और यहाँ पे मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मनीषा शर्मा जी, आपका भी वेलकम है। नेटवर्क बड़ा सोलो काम कर रहा है यार, मैं क्या करूँ। रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सोनू गौतम जी को, मैं हूँ प्रेम रोगी। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बागेश्वर निषाद जी, आपका भी। और हमारे अवधेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अवधेश कुमार जी। अवधेश नाम है या कुछ नाम का स्पेलिंग आपका अगर जो भी है आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं, मैं उसको ठीक कर दूंगा। और शेर सिंह सहनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है शेर सिंह सहनी जी। लिखते हैं कि तो उधर भेज दीजिए, मतलब यानी सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से। दीपक जी लिखते हैं कि अमन जी बबीता जी की आवाज़ बहुत दिन से सुनाई नहीं दे रहे, बबीता जी पता ना कहाँ गायब हो गई है, मुझे नहीं पता है। और हमारे एम ताहिर जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
1: अमन खान सर आपको आदाब अर्ज हो।
0: आदाब आदाब।
1: और सर सोनू गौतम जी की पसंद अपने आप में बेमिसाल लगी, हमेशा की तरह जब भी कुछ डिमांड करते हैं कुछ हटकर होती है, और आज भी ये साबित कर दिया है कि मेरी पसंद ही होती है। गीत दिल को छू गया, तहे दिल से उनको मेरी ओर से बधाई।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और सोनू गौतम जी क्या कहेंगे, लेकिन फिलहाल ये फिर ये सुनते हैं।
2: वाह भाई सोनू गौतम जी, क्या खूब गाना लाया आपने, शुक्रिया इस गीत के लिए। मैं आत्माराम पाटिल।
0: वेलकम जी आपका आत्माराम जी। और यहाँ पे निशांत राय बोले जी लिखते हैं बहुत ही शानदार लाजवाब गाना है, यानी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सोनू गौतम जी को। सोनू गौतम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच चमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और मेरे गाने में रणवीर सिंह जेठालाल भी शामिल हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो बात हो चुकी है। अगला डिमांड मैं सुनवा रहा हूँ आपको सर्वजीत सेठी जी फाजिल का, पंजाब से सुनना चाहते हैं। फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू।

0: बिल्कुल फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू प्लीज। और यहाँ पे सर्वजीत भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अरजय अमन सर जी, सर्वजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल क्यों, वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे ओके, और यहाँ पे लिखते हैं सुरिंदर पाल जी के, अमन जी सॉन्ग बहुत ही प्यारा लगा है, मैं हूँ प्रेम रोगी। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि फूल मांगू ना बाहर मांगू, ये भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। शिल्पा बेन लिखते हैं कि फूल मांगू ना बाहर मांगू गाना सच में बहुत ही बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक

0: कभी तुझसे कभी ना छुपाया। अमन भाई मजा आ गया गाना सुन के, बहुत ही लाजवाब गाना लगा
1: जी। ओके अब अगला जो डिमांड है हमारे वो तीन दोस्तों का है, अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी।
2: नमस्कार अमन सर।
1: नमस्कार।
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज संडे स्पेशल में मूवी चॉइस, तो मुझे फिल्म फूल और कांटे का गीत सुनना है।
1: okay.
2: और गाने का बोल है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर। धन्यवाद।
3: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
3: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है फूल और कांटा काटे, और गाने का बोले धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। और स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत अंदाज जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद से करायन प्रकाश, सोनी कुमारी, मुनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, और मुन्ना जी, और संतोष कुमार जी, और आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आरजे वंशिका जी, और आरजे आदित्य जी, आरजे आकांक्षा जी, आरजे सोनी जी, आरजे एम एस परमार जी, आरजे रत्ना जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के अमर।
1: और आदित्य नहीं, आदिति, अदिति, अदिति, अदिति। ओके, ये आत्मराम जी।
4: वाह भाई सोनू गौतम जी,
1: सॉरी गलती लेकर दिया।
4: अमन सर जी
5: चली आई दुहाई, ओए क्या बात
4: नहीं, क्योंकि 90 स्पेशल है ना, तो क्या कहना, सबसे गाने बिल्कुल
1: अच्छा आपका वो, यानी कि लिखित फरमाइश थे, कोई बात नहीं, फिलहाल आपने लिख कर भेज दिया, नो प्रॉब्लम, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। फिलहाल आप इन तीनों की पसंद पर मैं सुनवा रहा हूँ, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, एंजॉय। अगर हम यानी प्यार को जल्दी जल्दी बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ही क्यों,

0: और राहुल पासी जी ने धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। गाना सच में बहुत ही प्यार लगा है। धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को सर्वजीत सेठी जी।
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो गीत चल रहा है अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी की पसंद का, वो भी बहुत शानदार गीत है और कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है। तो सुनते रहिए हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं।
2: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके बहुत सारे श्रोताओं ने फीडबैक दिए, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी अशोक देशमुख जी आपका भी। और जैसे कि फीडबैक देने में हमारे इन विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सॉन्ग में बहुत ही मस्त लगा है, सभी को धन्यवाद देते हैं। आरिफ सिंधी जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
3: अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, तीनों दोस्तों की पसंद बहुत ही लाजवाब शानदार। सुनवाने के लिए शुक्रिया। और आरजे अमन सर जी, आपने प्ले करके हम तक पहुंचाया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद। अभी कहाँ हैं आप, इन चेन्नई में हैं। और यहाँ पे लिखती है पूजा भास्कर जी के, ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। असलम राणा जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। और लिखते हैं कि मैं भी जुड़ चुका हूँ और सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। ओके जी, वालेकुम सलाम। और हमारे ये सुंदर पालन भोला जी लिखते हैं कि अमन जी जी जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी बढ़ाया था, ये फीडबैक सुनते हैं।
4: अमन जी, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, क्योंकि धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, और जल्दी जल्दी करेंगे तो प्यार का स्टॉक खत्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाने के बाद क्या होगा, तलाक तलाक तलाक।
0: ओके जी, ये फीडबैक सुनते हैं।
5: दिल से शुक्रिया सर, आपने हमारी तीनों भाई की फरमाइश चला दी, तहे दिल से धन्यवाद। मैं आत्माराम पाटिल, लिहा बुलढाणा महाराष्ट्र से।
0: धन्यवाद आते हैं। और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं कि तीनों दोस्तों की मिली जुली डिमांड बहुत ही लाजवाब, थैंक यू सो मच। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, मनोज भाटिया जी का, सुना चाहते हैं ए मेरे हम सफर। इंजॉय कीजिए इस गाने को, क्या मत से क्या मत तक का।

0: मंजिल प्यार की। यार सिद्धि जी देखते कि अभी चेन्नई में हूँ। अच्छा ओके, अभी और कुछ दिन रुकने का इरादा है। ओके ओके ओके, हैप्पी जर्नी आपका। और यहाँ पे मोहन निवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मोहन निवारी जी सभी लिखते हैं कि सभी दोस्तों का गाना शानदार लगा है। एम इन तहर जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की पसंद लाजवाब लगी है, सभी को थैंक यू सो मच। बागेश्वर निषाद लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और सैयद उन्होंने जी क्या कहते हैं,
1: थैंक यू। अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी और आत्माराम पाटिल जी, आप तीनों के गीत में मुझे शामिल करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं सैयद दिनों सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार, जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी,
0: वेलकम जी आपका भी। और सर्वेश भगत जी,
2: अजय अमर सर जी, मनोज भाटिया जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे आरिफ सिंह जी, बहुत ही प्यारा नगमा है, सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सोनू गौतम जी कहते हैं,

0: अमन भाई बहुत ही लाजवाब सॉन्ग लगा कयामत से कयामत तक मूवी का।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे पिपू राय जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है। और मीना कुमारी लिखते हैं कि कयामत से कयामत तक का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला जो रिमांड है हमारे वो शेर सिंह सैनी जी का, और शेर सिंह सैनी जी सुनना चाहते हैं, तुमसे मिलने को दिल करता है। अरे मुझे भी दिल करता है।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। फिलहाल तो एयरटेल का नेटवर्क डिस्टर्ब कर दिया है मुझे, बिल्कुल उसमें नेट ही नहीं काम कर रहा है। और अभी फिलहाल मैंने जियो के नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है, जब तक ये नहीं काम करे तब तक मैं काम कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास बहुत से फीडबैक भी आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और यानी कि पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि तुमसे मिलने को दिल करता है, गाना सच में बहुत ही शानदार है और प्यारा है। आर्य सिंधी जी लिखते हैं कि सुपर से ऊपर वाला गाना है हमारे शेर सिंह सहनी जी का, वेलकम करते हैं इनको। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
1: आरजे अमन सर जी शेर सिंह सैनिक अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर
0: जी आपका। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं तुमसे मिलने को दिल करता है, बहुत बढ़िया गाना है जी, बिल्कुल। और शेर सिंह सैनी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा गाना प्ले करने के लिए। और मोहन निवारी जी लिखते हैं कि तुमसे मिलने को दिल करता है, बहुत मस्त गाना है, मजा आ गया सुन के। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि शेर सिंह जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है शेर सिंह जी का, थैंक यू सो मच। राहुल पासी जी लिखते हैं कि तुमसे मिलने को दिल करता है, गाना सच में बहुत ही लाजवाब है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि हर लाइव सॉन्ग चल रहा था जी, बिल्कुल, चूंकि नेटवर्क डिस्टर्ब कर दिया था मुझे, अभी पता नहीं आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता है। मीना कुमार जी लिखते हैं कि सिर्फ इन गाना बज रहा है, अच्छा हाँ क्या करें। दीपक जी लिखते हैं कि अमन जी कहीं खो गए हैं, नहीं नहीं कहीं खोए नहीं हैं, बिल्कुल यहीं पे हैं और थोड़ा सा परेशान हैं। और यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्त गाना सुनने को मिला, मजा आ गया। अगला जो डिमांड है हमारे बागेश्वर निषाद जी का है, सुनना चाहते हैं कि तुम पर हम है अटके यार, इन्जॉय कीजिए इस गाने को।

तो भैया को मनाओ ना प्लीज। फिलहाल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं और यहाँ पे सोनू गौतम जी कहते हैं कि अब ठीक चल रहा है वो, थैंक यू सो मच। और एम ताहिर जी का भी वही है मैसेज कि अब रफ्तार के साथ चल रहा है जी, थैंक यू सो मच। अगला जो रिमांड है, अच्छा मतलब फीडबैक भी है, मोहन हमारे जी कहते हैं कि गाना बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, प्ले हो रहा है, मजा आ रहा है, सुन सुनकर धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि हम भी हैं जरा अटके भटके, ओके। राहुल पासी जी लिखते हैं कि तुम पर है हम, हमें अटके आ रहा है, ये वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं भाई साहब को इस गाने के लिए। और मनीषा जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मनीषा जी आपका। गजानन सरकार जी लिखते हैं कि तुम पर है हम हैं अटके यारा, ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं आपको। शिल्पा बेन लिखते हैं कि प्यार करो डरना क्या, इसका गाना ये बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और आर्य संदीप जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, क्या बता दूं। असलम राणा जी का सुनना चाहते हैं ये गाना और सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं। सुनवा दी असलम राणा जी, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बनाते हैं। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। राजेश गौतम जी जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत वेलकम करते हैं राजेश गौतम जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अरजय अमन सर जी, MD असलम राना जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर
0: जी आपका भी। और यहाँ पे थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है राहुल पासी जी का,
2: तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बनके रहेगी कोई कहानी, फिल्म का नाम पति पत्नी और तवाया। अमन सर जी ये सॉन्ग सुनना है सभी दोस्तों के लिए, आपके लिए और सारे फ्रेंड्स के लिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं मोहन मैच जीतेंगे सभी दोस्तों का गाना सुपर हिट प्ले हो रहा है और गजाना सुनकर जीतेंगे असन आना जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद है धन्यवाद देते हैं उनको राहुल पासी जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए मेरा और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये तेरी मोहब्बत वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है थैंक यू सो मच राहुल पासी जी को रविंद्र गोरखपुर जी लिखते हैं कि अमन सर जी मैं भी जुड़ चुका हूँ रविंद्र गोरखपुर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं और कहना और ये फिर मैं
1: अजय अमन सर जी राहुल पासी जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर
0: वेलकम जी आपका भी और यहाँ पे शीता बहन जी लिखते हैं कि ये बन के रहेगी तेरे

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और विजय राजी रहते हैं सर जी, नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई विजय राजी आपका भी। और रविंद्र गोरखपुर जी रहते हैं कि वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आत्माराम जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: मोहम्मद अजीज और सलमा आगा जी ने गाया हुआ गीत बहुत ही बेहतरीन लगा और दूसरा ही गाना बैक टू बैक उनका ही गाया हुआ बहुत ही बेहतरीन। शुक्रिया फरमाइश करता हूँ को मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे विकास गदकारी जी जुड़े हैं, लिखते हैं सलमा आगा की आवाज़ में बहुत ही गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और राजेश गौतम जी लिखते हैं बैक टू बैक लाजवाब सॉन्ग सुनने को मिला, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि कहना ना तुम किसी से, ये गाना सच में मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि कहना ना तुम किसी से बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारी माँ जी जुड़ चुके हैं, नंदनी माँ जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और शेर सिंह सैनी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है जी, बिल्कुल।

और यहाँ पे मनीष शर्मा जी लेते हैं कि सुपर सॉन्ग है और निशांत राय बोलते हैं कि गाना सच में लाजवाब है। अगला डिमांड है हमारे वो यानी विष्णु चंद्र जी का है, सुनना चाहते हैं इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल इस दुनिया में जब प्रेम ग्रंथ लिखा जाएगा तो तेरा मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। और यहाँ पे फीडबैक भी बहुत सारा आ चुका है। मनीषा जी लिखते हैं कि आजकल कोई भी लेडीज दिख नहीं रही है, सब कहाँ चली गई। जी मुझे नहीं पता है सब कहाँ गायब हो गया अचानक से, कोई दिख नहीं रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा, गाना सच में बहुत अच्छा है, मजा आ गया सुन के। असलम राणा जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी शुक्रिया, धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और निशांत राय बोल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और फीडबैक सुनते हैं
1: अमन सर जी प्रोग्राम पेश करने की ऑपरेटिंग और मधुर आवाज और सभी भाइयों के फीडबैक, ये आज का प्रोग्राम का बहुत विशेष है सर, शुक्रिया सभी को। मैं आत्माराम पांडे।
0: ओके जी। और यहाँ पे पिकू राय जी लिखते हैं कि सुनते रहिए रेडियो हॉट चार्ज जो दीवाना बना दे और मजा आ गया सुन सुन के। अनिल मेहता जी लेते हैं कि वाह क्या गाना है, लाजवाब गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आगरा वाले। और हमारे यहाँ ताहिर जी लेते हैं कि ओके। और बिल्कुल। और यहाँ पे अनिल मेहता जी लेते हैं कि ओके ठीक है, फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ। अच्छा ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा।

0: नाम सबसे ऊपर आएगा इस दुनिया में, प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा।
1: वाह अमन सर, बहुत लाजवाब गाना, पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदलाल यादव
2: जी। बिल्कुल, अगला जो डिमांड है हमारे वो विकास, विकास मतलब विकास कदाकारी जी। ओके, ये महाराष्ट्र से है, ये सुनना चाहते हैं, यानी कि तुझ में रब दिखता है। सच में ये गाना मुझे बहुत प्यार लगता है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मेरे साथ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं फिलहाल। मैं यानी देखता हूँ क्या हो सकता है। राहुल पासी जी लिखते हैं रब ने बना दी जोड़ी, मुझे गाना बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा गाना सच में मुझे बहुत ही प्यार लगा है। और आरिफ सिंधे जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही प्यारी प्यारी है, ओके जी। और हुकुम चंद जांगर जी लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और विकास करी जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले कर।
1: मैं हूँ तेरा गीत गोरी तू ही मेरी तान है, मैं हूँ तेरा गीत गोरी तू ही मेरी तान है, तू ही मेरी जान।
0: और राजेश गौतम जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है, ओके। और बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि ऑल सॉन्ग्स आर वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आमना खान जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, ओके। और आपका बहुत बहुत वेलकम है। अपिकुरा जी लिखते हैं कि डिस्टर्ब हो रहा है जी, मुझे पता है नेट मेरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि धन्यवाद मेरा गाना
1: है, पर थोड़ी सी नादान है।
0: हद से ज्यादा सनम तुमसे प्यार किया।

0: बिल्कुल हद से ज्यादा सनम तुझसे प्यार किया गाना सच में मुझे बहुत अच्छा लगा है। रवि महाराज जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रवि महाराज जी आपका भी। और बिल्कुल राज लिखते हैं कि हद से ज्यादा सनम तुझसे प्यार किया गाना सबसे सबसे अच्छा लगा, सबसे स्वीट लगा है। ओके जी। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि एम ताहिर जी आपकी पसंद बहुत ही शानदार लाजवाब और सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी लिखते हैं कि ओके, तो कौन सा गाना है जरा मुझे बताइएगा प्लीज। और आपका राहुल पासी जी लिखते हैं कि हद से ज्यादा सनम तुझसे प्यार किया गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है। और रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं कि ये गाना मुझे काफी अच्छा लगा है। ओके जी। और और यहाँ पे राजेश गौतम जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: अरजे अमन सर जी, एम ताहिर जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले कर रहा हूँ। ये डिमांड किनका है हमारे बता देता हूँ। मनोज भाटिया जी आपका तो गाना ऑलरेडी हो चुका है और राजेश गौतम जी का है। राजेश गौतम जी सुनना चाहते हैं मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। तो इसलिए आपके गाने को मैं सुना रहा हूँ, मोहब्बत है क्या चीज। सच में ये गाना जब भी सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। मोहब्बत है क्या चीज़।

मोहब्बत है क्या चीज़ हमको भी बताओ, और ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। वैसे आज के जो फिल्मों के नाम है वो नसीब 1981 वाली, ओम शांति ओम 2007, और प्रेम रोग 1982, और पति पत्नी और त्वाइफ 1990, और फूल और कांटे 1991, और पत्थर के फूल 1991। हाँ, इसके कोई भी गाना अभी तक नहीं आया है। इसमें दो गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं, यानी कि कभी तो छैला लगता है और तुमको ही देखते ही प्यार हुआ, दोनों गाने बहुत ही प्यारे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। और यानी कि प्यार दीवाना होता है कभी, गाना बहुत ही प्यारा प्यारा है लेकिन अभी नहीं आया है। और पहचान का भी, और यानी प्रेम 1995, और प्रेम ग्रंथ 1996, प्यार कर तो डरना क्या 1998, और क्यामत से क्यामत तक 88, राम लखन रंग का नहीं आया है, राजा बाबू, और राजा है, राज है, रक्त है, रक्षक है, और रब ने बना दी जोड़ी है। फिलहाल बहुत से यानी प्यारे प्यारे गाने अभी तक नहीं आए। माई गॉड, यानी कि वो गाना यानी प्यार कर तो डरना क्या, यानी तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, मस्त मस्त है, सच में गाना भी मस्त मस्त है।

बिल्कुल हमें भी बता दो भाई, मोहब्बत एक क्या चीज है, और ये भी बता दो कि अगर कोई रूठ जाए तो कैसे मनाते हैं, ये जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एम तहर जी लिखते हैं कि अमन जी मेरी पसंद का गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। ओके जी, और हमारे एन पीकू राय जी लिखते हैं कि मोहब्बत है क्या चीज़ सुपर हिट गाना लगा है, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ शिल्पा बेन लिखते हैं कि मोहब्बत है क्या चीज़ सुपर एक्सीलेंट सॉन्ग है, और हमारे एन राहुल पासी जी लिखते हैं कि मोहब्बत है क्या चीज़ सॉन्ग सच में बहुत ही प्यारा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए है। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि अमन भाई MD यानी ताहिर जी की जो पसंद थी बहुत लाजवाब लगी, हद से ज़्यादा सनम तुझसे प्यार किया, और सोनू निगम की आवाज़ में बेहतरीन सॉन्ग लगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं सोच रहा हूँ कि आज इनको यानी इनको सॉन्ग ऑफ द डे का विनर बना दिया जाए, क्योंकि गाना सच में बहुत ही प्यार लगा मुझे भी। सर्वजीत शरीफ जी लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत शानदार जबरदस्त चल रहा है, मज़ा आ रहा है सुन के, और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त गाने अमन जी, मज़ा आ गया सुनवाने के लिए, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि राजेश गौतम जी की भी पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, हमारे एक निशांत राय बोले जी हैं, और साथ ही साथ इसी गाने में शामिल हो रहे हैं गजानंद सुनकार जी का पूरा ग्रुप, तो सुनवाते हैं और दोनों दोस्तों की पसंद का ये प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक और रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और फीडबैक भी मेरे पास आ चुका है। राजेश गौतम जी रहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, दिल से धन्यवाद देते हैं। और फीडबैक देने वाले दोस्तों का भी धन्यवाद। ओके जी। और यहाँ शिल्पा बहन जी रहते हैं कि मेरी चूड़िया बजी है, बहुत ही प्यारा गाना लगा है। ओके जी। और गजानंद जी से आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हरे सिंह जी लिखते हैं कि हमारे गजानंद जी के ग्रुप की डिमांड बहुत ही प्यार लगा।

और पीकू राय जी लिखते हैं कि मेरी चुड़िया बजी है खन खन गाना सच में अच्छा लगा है। राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये यानी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और हाँ मेरे कोई सुनील कुमार यानी कि नायक जी है, ये गाना भाई आपने दूसरा मतलब जो गाना आपने भेजा है जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे जिंदगी बन गए हो तुम, ये तो यानी कि ये तो गाना बिल्कुल नहीं है, राज फिल्म में गाना तो है ही नहीं, ये तो किशोर फिल्म में गाना है, इसलिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ओके और फिलहाल यहाँ पे मनीषा जी लिखते हैं कि आग लग जाएगी गाना बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है मैं प्ले कर रहा हूँ किनका वो मैं प्ले कर रहा हूँ आपको, मनीषा शर्मा जी का लिखना, ये लिख रहे हैं कि तुम अगर सामने आ भी जाया करो, बिल्कुल तो सुनाता हूँ ये गाने को, तुम अगर सामने आ भी जाया करो, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार मूवी चॉइस। कल सोमवार में सुनिए स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल और कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार और रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: ओके चुकी एक्चुअली क्या था कि गाने का बोल था मैं अगर सामने आ भी जाया करूं और ये इन्होंने लिख दिया था तुम अगर सामने आ भी जाया करो, इसीलिए मुझे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। सॉरी, एंजॉय कीजिए गाना।

0: अगर तुम वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं और प्रमोद कुमार लिखने का जो आप चॉइस चल रहा है और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं अमन जी आज रत्ना जी का प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग मंगलवार को होगी कि नहीं। नहीं, अब मंगलवार को नहीं होगी, उनकी रिकॉर्डिंग होगी अब शनिवार को और प्रोग्राम आएगा रविवार को 2:30 बजे से। इसलिए अब आपको कॉल करना होगा हर शनिवार 11 बजे। ओके, और सर्वेश भगत जी का
1: जय अमन सर जी, मनीषा शर्मा जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल किए हैं। सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और निशांत भाई लिखते हैं कि मेरा गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और गजानंद जी लिखते हैं कि मनीषा शर्मा जी के पसंद मैं अगर सामने आप भी जाया करूँ अच्छा लगा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि राज फिल्म का गाना बहुत ही बढ़िया लगा है। मनीषा शर्मा जी लेते हैं थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। ओके, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा विजय राज जी का, सुनना चाहते हैं हम तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थिएटर के अंदर।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं और यहाँ भी यानी विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मैं अगर सामने आप ही जाया करूँ, गाना मुझे सच में बहुत ही प्यारा लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और ओके, और यहाँ पे अरे सुंदर जी लिखते हैं कि ये रंग मूवी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि हम तुम पिक्चर देख रहे हैं, गाना मुझे सच में बहुत ही खूबसूरत लाजवाब लगा है। गजानंद जी लिखते हैं कि हम तुम पिक्चर देख रहे हो, गाना सच में बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: सर जो तेरा चकराए या दिल घुमा जाए, आजा प्यारे तुझको हम रेडियो हॉट स्टार सुनाए, रेडियो हॉट स्टार सुनाए। सर दर्द का इलाज रेडियो हॉट स्टार के बढ़िया और शानदार गाने। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: धन्यवाद देते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी। विजय राजी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अंगद मिश्रा जी लिखते हैं कि शानदार गाना चल रहा है। जी बिल्कुल। और राजेश गौतम जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग सुनने को मिला। ओके, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक तिवारी जी सुनना चाहते हैं उइया। ओके, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट हिट जो दीवाना बना दिया। और ये फीडबैक सुनते हैं, क्या कहते हैं दीपक कुमार के अखबार को।
1: हे मनवा, ये आरजे अदिति जी का प्रोग्राम कब आ रहा है और क्या उसका कोई प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, यह हमें बताइए ना। ठीक है, धन्यवाद।
0: ओके, तो मैं बता दूं कि आरजे अदिति जी के प्रोग्राम में अभी अप्रूवल नहीं मिला हुआ है हमारे जो इन बॉस है उनके तरफ से। जब उनके तरफ से अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही उनका प्रोग्राम हो पाएगा। रामकेश जी लिखते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये फिल्म यानी कि रक्षा का गाना मुझे अच्छा लगा है। अगला जो डिमांड है वो मतलब किशन पाल सक जी का, और सुनना चाहते हैं बड़ा दुख देना, इंजॉय कीजिए।

0: लखन की बात करती हो तू?
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते हैं और फिर मेरे पास बहुत सारे राहुल पासी दिल से और राम की बड़ा दुख देना तेरे लखन ने गाना सुन के मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। राम के जी लिखते सुपर सॉन्ग है, दिल को सुकून मिल गया सुन के। और किशन पाजी लिखते अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और गजानन जी लिखते हैं कि ओ राम जी बड़ा दुख देना, बहुत ही प्यारा गाना लगा है लता मंगेशकर की आवाज़ में। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये तेरे लखन ने बड़ा दुख देना गाना बहुत अच्छा लगा है। और शिपा पे लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बेहतरीन चॉइस है इस ये गाने की। और विकास विकास गडकरी जी लिखते हैं कि लता जी की बेहतरीन आवाज़ और गीत और धुन सुपर हिट। विकास गडकरी, अच्छा विकास गडकरी, ओके जी मैं समझ गया आपका नाम। और नंदनी मालिक जी के बहुत ही प्यारा गाना है जी माँ जी, थैंक यू सो मच। रवि महाराज जी लिखते हैं कि माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है, जितनी बार भी सुनो जितनी तारीफ करो उतना ही कम है, अच्छा लगता है जी। तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, वैसे आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। वैसे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो है संदीप सुतार जी का, एंजॉय कीजिए संदीप सुतार जी।

बाप रे बहुत खतरनाक है जी। ओके और यहाँ पर राम के जी लिखते हैं कि सच में खतरनाक गाना है जी, अच्छा लगा गाना सुन के। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि अबे बेकदर बेवफा बालमा बहुत बढ़िया गाना। ओके जी और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं संदीप खुदा जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और जुड़ चुके हैं नाम है इनका विजय कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है विजय कुमार जी आपका भी। अगला जो डिमांड है हमारी मिसाल अंगद जी का है, सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

ओके अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो ये मीना जी का प्ले करने वाला हूँ। मीना जी सुनना चाहती है मेरे नसीब में तू है कि नहीं। वैसे फिर है मेरे पास आए हुए हैं मनीषा जी, लिखते हैं कि राम दाहर का गाना मुझे अच्छा लगा है, और राम के जी लिखते हैं कि भाई मिसालंगा जी आपके गाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं गाना सच में बहुत खूबसूरत लगा थोड़ा दर्द वाला है, और राहुल पासी जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है मिसालंगा जी का, राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। ओके जी सुनवाते हैं ये गाना।

मैंने गलत गाना प्ले कर दिया क्योंकि नसीब का पता। अच्छा हाँ है, ठीक है। मैं भी बेवकूफी इंसान हूँ, ध्यान नहीं दिया था, सॉरी।

0: वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास आ चुका है।
1: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में फीडबैक दे रहा हूं। और अमन सर जी, आपने मेरा गाना सुनवाया, आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन सर जी, ये गाना मुझे बहुत इच्छा थी कि ये गाना रेडियो हॉटस्टार पर बजे, तो अमन सर जी आज आपने मेरी इच्छा पूर्ण की, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दोस्तों ने फीडबैक दिए, मैं सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद दूंगा।
0: वेलकम जी आपका भी, और राम के जी लिखेंगे बहुत ही अच्छा गाना लगा है, जितना भी सुनो कम लगता है। ओके, और राजू तिवारी जी लिखेंगे हाँ जी ओके जी। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखेंगे मेरे नसीब में गाना बहुत अच्छा लगा है। अगला जो डिमांड है वो मनीषा जी का है, मनीषा जी सुनना चाहती है मेरी किस्मत में तू नहीं शायद।

अगला जो गाना था इससे पहले वाला वो था यानी मेरे नसीब में, ये गाना हमारे यानी नाम ही नन्हे लाल गुप्ता जी, उनकी भी डिमांड यही गाने की थी, जो यानी गोंडा मुझे यूपी से सुनते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत वेलकम है इस गाने में।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। गजानन जी लिखते हैं कि दोस्त मिसाल अंग्रेजी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, उनको धन्यवाद देते हैं। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि देखिए आज का ये जो आपने गाना भेजा है राजीव तिवारी जी, वो गाना आज के इन फिल्मों में नहीं, आज के जो इन फिल्में हैं उनका नाम मैं बता रहा हूँ, नसीब 1981 वाला, ओम शांति ओम 2007, और प्रेम रोग 1982, और पति पति त्वाइफ 1990, और फूल और कांटे 1991, और पत्थर के फूल 1991, प्यार दीवाना होता है 2002, और पहचान 1993, और उसके बाद है यानी कि प्रेम 1995, और प्रेम ग्रंथ है 1996, और उसके बाद है यानी कि प्यार किया तो डरने का 1998, और क्यामत से क्यामत तक 1988, और राम लखन 1989, और रंग 1993, राजा बाबू 1994, और राजा 1995, और राज 2002, और रक्त 2004, और उसके बाद है यहाँ रक्षक 2006, और उसके बाद है रब ने बना दी जोड़ी 2008। इनमें से गाने भेज सकते हैं आप। फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, अच्छा एक मिनट फीडबैक ले लूँ पहले। रामकेश जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि वाकई में गाना बहुत लाजवाब है, धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं मेरी किस्मत में तू नहीं शायद सुपरहिट गाना है, और राहुल पासी जी लिखते हैं मेरी किस्मत में तू नहीं शायद गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा, धन्यवाद देते हैं। और मनीषा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। रवि मोहन जी लिखते हैं कि जी ओके तो भेज दीजिए दूसरा। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाह लाजवाब डिमांड है, और गजानंद जी लिखते हैं कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है। अगला जो डिमांड है वो दो दोस्तों की है, एक हमारे यानी कि शिल्पा बेन जी की है, और शिल्पा बेन जी के साथ साथ वो है हमारे

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना। सच में ये प्यार ही था, ये कुछ और नहीं था, सिर्फ प्यार था, प्यार प्यार प्यार। गजानंद जी लिखते हैं कि ये प्यार था, ये कुछ और था, गाना मुझे सब बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं, ये प्रेम रोग का गाना। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये गाना सच में बहुत ही शानदार है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब गाने के लिए, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी

सिंह ये प्यार सा कुछ और था गाना सच में बहुत ही प्यारा लगा। अगला जो डिमांड है वो आरजे वंशिका जी ये सुनना चाहती हैं, आपके प्यार में हम संवरने लगे। सुना दिया आपके प्यार में हम संवरने लगे।

और पहली बात है कि जो अगला गाना लोड किया वो यानी कि अभिजीत की आवाज में हो गया था। मैंने जो यानी दूसरा किया वो क्या हुआ, एक मिनट का गाना लाउड मतलब डाउनलोड हो चुका था, इसलिए मुझे यानी तीसरा बार गाना डाउनलोड करना पड़ा। माय गॉड, गजब, कभी कभी गजब हो जाती है।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दिया। और यहाँ पे लिखती है इंस्टीट भाई बहन जी की, अमन जी थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और आपके प्यार में समझने लगे गाना भी बहुत ही अच्छा है। रवि मार जी लिखते हैं कि ये प्यार था या कुछ और था, बहुत ही सुपरहिट लाइज आप गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है, धन्यवाद देते हैं। और आरजे वंशिका जी की पसंद बहुत अच्छी है। राहुल पाची जी लिखते हैं कि आपके प्यार में हम समझने लगे हैं, गाना बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि आपके प्यार में हम समझने लगे, अलका याग्निक की आवाज़ में बहुत लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं आरजे वंशिका जी को। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ये तो मेरी भी पसंद का गाना है, जी बिल्कुल। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ ये बिंदिया जी के, और बिंदिया जी सुनना चाहती हैं ये बहुत ही प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट जो आपको दीवाना बना दो। शिल्पा बंजली सिंह गाना सच में बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। बिंदिया जी को अगला जो डिमांड है मैं सुनवा रहा हूँ आपको, यह है हमारे यानी प्रमोद कुमार जी का। और प्रमोद कुमार जी सुनना चाहते हैं कि तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, बिल्कुल तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सुनाते हैं।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और आपके चलते हैं कि भाई प्रमोद जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और ओके जी, और हमारे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया। और राजीव जी लिखते हैं कि तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, बहुत ही सुपरहिट डुपरहिट गाना सुनने को मिला है। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि देखते ही देखते प्यार हुआ, जबरदस्त गाना सुनने को मिला गया है। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि यह वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, बहुत ही बेहतरीन गाना लगता है। अगला जो डिमांड है इसी फिल्म का है, यानी पूजा भास्कर जी ये सुनना चाहती हैं कभी तो छैला लगता है। अरे हम तो बहुत ही कुछ लगते हैं, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: जीवन।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे राम के जी रहते हैं कि यानी पूजा भास्कर जी की डिमांड मुझे बहुत ही पसंद आई, धन्यवाद देते हैं उनको। और बागेश्वर निषाद जी रहते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, गुड सॉन्ग। राहुल पासी जी लिखते हैं कि कभी तो छला लगता है गाना, सच में बहुत ही अच्छा लगा है। और रवि महर जी लिखते हैं कि तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, हमारे परम मित्र यानी परमो जी का डिमांड बहुत ही शानदार लगा है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि कभी तो छला लगता है गाना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है, धन्यवाद देते हैं। राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ये कभी तो छला लगता है गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि कभी तो छला लगता है, ये यानी पूजा भास्कर जी का डिमांड मुझे बहुत ही प्यारा लगा। अगला जो डिमांड है वो मैं सुनवा रहा हूँ, किनका है मैं बता दूं, राजीव तिवारी जी का है। राजीव तिवारी जी सुनना चाहते हैं तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया। ओ तो हैंग कर गया कंप्यूटर, कोई बात नहीं, दूसरा डाउनलोड कर लेते हैं। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। ओके, हो गया, सुनवा दिया।

0: बिल्कुल मस्त मस्त है, क्योंकि यानी कितना प्यारा है ये चेहरा जिसमें हम मरते हैं ना। और विष्णुचंद्र जी कृष्ण के पूजा भाई का ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। राजीव जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। नंदिनी मां लिखते हैं कि कभी तो जुगनू लगता है तो पहले गाना लगता है। और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, गाना बहुत ही प्यारा है। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा है। अगला जो डिमांड है हमारे सैयद योनू जी का है, सुनना चाहते हैं ये गाना।
1: अस्सलाम वालेकुम आरजे अमन सर जी, मैं अष्टी जिला जालना महाराष्ट्र से सैयद यूनुस बात कर रहा हूँ सर जी। और आज स्टार मूवी चॉइस और मेरी आज की मूवी है सर जी राज। उसी मौके पर एक राज में का सॉन्ग लेकर आया था और सॉन्ग है कितना प्यारा है ये चेहरा जिसपे हम मरते हैं।
0: अच्छा जी,
1: ये गीत की बोली सर जी।
0: ओके, ओके।
1: और इस गीत के साथ मेरे कुछ चंद दोस्त लोग हैं। सबसे पहले तो है आर जे अमन सर जी, आप
0: थैंक यू
1: और आपकी सुंदरता की मूर्त।
0: थैंक यू सो मच
1: जी। वेलकम वेलकम वेलकम सर। और जितने भी रेडियो हॉट स्टार सुन रहे हैं आज का स्टार मूवी चॉइस, उन सबको ये सॉन्ग भी दिखेगा। ऐसे ही सुनते रहिए।

लेकिन मेरा गाना अभी नहीं प्ले होगा, मैं अंत में प्ले करने की कोशिश करूंगा। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लगा है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। राजीव जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच भाई, यानी कि सही दोनों जी आपने बहुत ही प्यारा गाना सुनवा दिया, धन्यवाद देते हैं। आर्य सिंह जी लिखते हैं कि भाई कार्यक्रम तो शानदार चल रहे हैं, सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने प्ले हो रहे हैं। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी कायनात जी का है, स्पेशली डेडिकेट है हम इन ताहिर जी को, और सुनना चाहते हैं कि तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको।

वेलकम बैक। और यहाँ पे चंद्र जी लिखते हैं कि आपके प्यार में सोने लगे गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और अच्छा, राहुल पासी जी लिखते हैं कि आपके प्यार में सोने लगे गाना है। और यहाँ पे विष्णुजीत जी लिखते हैं कि यानी कितना प्यारा है ये चेहरा जिसमें हम मरते हैं, गाना बहुत ही प्यारा लगा। एम ताहिर जी लिखते हैं कि यानी कि कायनात जी की पसंद तो इन सर आंखों पर, धन्यवाद देते हैं उनको, उन्होंने गाने डेडिकेट किया है। और गजानंद जी लिखते हैं कि तुमने अगर प्यार से देखा नहीं तो मुझे बहुत ही प्यारा गाना अलका याग्निक की आवाज़ में मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे एम यानी कि ताहिर जी जो आज के यानी सॉन्ग के यानी विनर बने हैं, उनकी पसंद का मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। एम ताहिर जी की पसंद स्पेशली डेडिकेट है कायनात जी को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना रहे बना दे। और यहाँ पे हम ताहिर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि एम ताहिर जी के पसंद अच्छा मिला हूँ, कभी आंखें चुराऊँ, बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए, मजा आ गया सुन के। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि एम ताहिर जी के पसंद बहुत ही लाजवाब, धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है वो रितु जी की है, सुनना चाहती हैं किसी दिन बनूंगी राजा की रानी, इंजॉय कीजिए गाना।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और अगला जो डिमांड है हमारे किनका है, ये हमारे शाहिद अंसारी जी का है। और शाहिद अंसारी जी सुनना चाहते हैं ये गाना। एंजॉय कीजिए।

लगता है कि हम कभी यानी कि ये डांस पे चांस मारना पड़ेगा। और राहुल पासी जी लेते हैं कि आंखें मिला हुआ लगाना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत पीछे चल रहे हैं। और सीता बहन जी लेते हैं कि बहुत ही मुझे फनी सॉन्ग सुनने को मिला, शाहिद जी को थैंक यू सो मच। और विष्णु चंद्र जी लेते हैं गाना बहुत ही प्यारा था शाहिद जी का। और राजीव जी लेते हैं कि नाइस सॉन्ग अमन सर जी। और फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हुकुम चंद जहांगीर जी का है, क्योंकि ये सुनना चाहते हैं ये शहर है अमन का, बिल्कुल अमन का है, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते हुकुम सची देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। अगला जो डिमांड है अवधेश कुमार जी का मैं प्ले करने वाला हूँ, सुनना चाहते हैं पक्की पक राजा बाबू, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम है कॉमेडी हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मैं यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये शहर है अमन का गाना सच में बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करना चाह रहा हूँ रवि मोहरे जी का, सुनना चाहते हैं हौले हौले हो जाएगा प्यार।

0: भी जुड़ गए हैं जी। वेलकम है निकलस जी आपका डेनमार्क से। और एम ताहिर साहब लिखते हैं कि अमन खान जी शो में आपकी पेशकश बेहद पुरकशिश और बासर है, जिसमें आपकी बुलंद आवाज और अंदाजे बयान सुनने वालों को मुतासिर करता है। आपकी जुनूनी अंदाज और दिल और खुलूस इखलास इस शो को बेहद खास और यादगार बनाता है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे रवि महाराज लिखते हैं थैंक यू सो मच और कुछ कहते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, मजा आ गया, लाजवाब। और सभी दोस्तों को भी तहे दिल से शुक्रिया मेरे गाने को पसंद करने के लिए, इतने अच्छे फीडबैक देने के लिए। मैं रवि मोहाड़े, बैतूल मध्य प्रदेश।
0: धन्यवाद। और अगला आखिरी गाना मैं प्ले करूंगा क्योंकि अब समय कम है।
2: नमस्कार अमन सर जी, मैं गोपाल पाटीदार रतलाम मध्य प्रदेश से। आज की मूवी चॉइस में मैं प्रेम रोग मूवी का गाना ये गलिया ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा ये सुनना चाहता हूँ। सबसे पहले ये गाना मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, उसके बाद सब ही सुनने वाले दोस्तों को। थैंक यू।

दे रहे हैं कोई नहीं, और आखिरी गाना मैं प्ले कर रहा हूँ यानी बिरबल बघेल जी का। और इसी गाने के साथ आप मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब खैर, बाय बाय।

ओह माय गॉड, और मेरी पसंद का तो गाना रह ही गया है, इसके बाद मैं अपने पसंद का गाना लगा के जा रहा हूँ, जरूर सुने, और वो स्पेशली मेरी सुंदरता की मुराजी को डेडिकेटेड होगा। अब लगता है मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मुझे दोबारा जाकर वापस आना पड़ा, माय गॉड मैं भूल गया था ना।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

तुम मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.